0: यार क्या बात आ, किदा थानू की लग्या है इदां दा गाना सुन के? वैसे है तां बहुत ज़्यादा मायूस करन वाला आ, जे ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा जिहा डाउनफॉल वाला आ, पर है तां सच्चाई आ। देखो देखो, कैपिटलिज्म ने ना सानू एक भुलेखा पाया होया आ कि अगे वधो, सब कुछ करो, पर मैनू लगता कि जिथे असी चढ़दी कला की गल करते हैं, जिथे असी अगे वधन की गल करते हैं, उथे एक चीज़ तो है यार, मिट्टी नालों दूर आने का दर्द जिहड़े लोग समझते आ उन्हां वास्ते बड़ी वड्डी गल आ। कहिंदे कि अपनी मिट्टी तो दूर आना, अजकल तो आप कहने ना कि असी तरक्की वास्ते आए हाँ, असी अपने रुजगार की भाल दे विच आए हाँ, अपने फ्यूचर चंगे ब्राइट फ्यूचर के लिए आए हाँ, पर किसी वेले जे आपां अपने बजुर्गों के वल वेखिए, इन्हां बड़ी वड्डी गाल हुंदी सी कि जा तेरा कख ना रवे, जा तेरा जिवें नहीं कहिंदे हुंदे सीगे कि तेरी औलाद नूं जे अग्गा बूटा ना लगे, जां मतलब वो चीज़ आ कि असी अपनियां नस्लां नालों टुट गए, जिहनूं कहिंदे सी कि जा तेरा, मैं वो कहना नहीं चाहुंदा वो शब्द, कि असी आपदियां नस्लां नालों साडी ओह जिहड़ी जिहड़ियां नस्लां साडियां उत्थे होणियां सी ओह होर धरती दे उपर हो गईयां। सो सानू कुदरत ने एक नियम दे विच बन्न के एक धरती ते भेजिया सी। देखो ये चीज़ा आ कि तुसी जे इसनू कैपिटलिज्म दे नाल वेखोगे तो बिल्कुल इहदा कोई तत्थ मोल नहीं आ, पर जे तुसी इहनू भावक भावनात्मक तरीके नाल, जे तुसी इहनू इमोशनल दे नाल, जे तुसी अपनी मिट्टी मुहब्बत प्यार उस चीज़ दे नाल वेखोगे ना, तो बड़ी वड्डी गल आ कि जे तुसी अपनी मिट्टी नालों दूर होना। जिहड़े शायर लोग आ, जिहड़े इंटलैक्चुअल लोग आ, वो इस चीज़ नूं बहुत वड्डा मानदे सी कि मिट्टी नालों दूर नहीं होना। जिवें तुसी मेरा दागिस्तान किताब पढ़ी आ, तो जदों वो एक माँ का बच्चा बाहर दूजे मुल्क दे विच चला जांदा वो कमाइयां करन, तो वो जदों अपनी बड़े साल वो आउंदा नहीं, तो माँ नूं लगदा कि वो चाहे खरे हैगा भी कि नहीं हैगा, तो बड़े सालों बाद कि उहदा दोस्त आउंदा तो उहनूं सब तो पहले पुछदी आ कि वह कहिंदा कि तेरा पुत्तर हैगा, वह कहिंदी पहले मैनूं ये दस कि वह अपनी बोली नालों टुटिया तो नहीं, तो जे टुट गया तो वह नहीं हैगा, क्योंकि जिहदा अपनी मिट्टी नाल प्यार, अपनी बोली नाल मुहब्बत आ, उहदे वास्ते ये चीज़ां व्यर्थ ने। सो 905-673-3337 905-673-3337 गल्लां होर पासे चलियां गईयां। सो थानू की लगता कि रिश्तियां नालों, गूढ़े रिश्तियां नालों, अपने रिश्तियां नालों, खून के रिश्तियां नालों दूरी पा के परदेसां दीयां धरतियां ते लंबा समा वो जदाइयां पाउणियां, कि वो वर्थ इट हैगियां, कि वो मुल उन्हां मुल हैगा उन्हां चीज़ां दा, जे आपां पैसा कमाउण पिछे फ्यूचर पिछे रिश्ते छड्डी रखदे हां 8-8, 9-9, 10-10 साल, 15-15 साल, कि वर्थ हैगा। 905-673-3337 जुड़े हो पंजाबी लहरां दे नाल। जी सत श्री अकाल रुपिंदर जी, तुसीं आउंदे रहो।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
0: जी सत श्री अकाल जी।
1: सवान ने सच्चा सारियां गल्लां जिन्नियां कहियां ने गाइयां। हाँ जी, इह तां बंदा तां इत्थे तुरिया फिरदा कलबूतार, रूह तां उत्थे पंजाब जी फिरदी आ।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। 905-673-3337 जुड़िया पंजाबी लहरां दे नाल।

0: आए तो
1: मुस्कुरा के जियो,
0: जियो ऐसे देखो रारा पम पम पम, कभी खुशी खुशी कभी
1: कभी गम,
0: एको जहा ना दिन हुंदा है ना एको जहा दिन, हर दिन नहीं आउंदा।
1: जी जी जी जी जी जी,
0: ये बहुत ध्यान रखना पैंदा है। एकदम ये सुख ते दुख दा कोई पता नहीं, जे बनिया दुख ताही हो ना।
1: जी जी जी,
0: सुख दुख दोए, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख।
1: बिल्कुल,
0: बंदिया में दुख सुख आउंदे है, शरीर नाल ही आउंदे है। कदे भी घबराओ ना, घबराहट जिहड़ी है ना बेटे ओह कहिंदे हुंदे है मार के भजदे, अगो गड्डी देखो किथे जा वजदी,
1: फिर
0: मुसीबत एक नहीं आउंदी, कई मुसीबत होर नाल लैके आउंदी है।
1: जिद्दां ओह कहिंदे ने जी मूसा भज्जे मौत तों अग्गे मौत खड़ी, जे तुसीं इक दुख तों भज्जोगे ना तां तुहानूं अग्गे कई होर कई किस्म दे दुखां नूं बर्दाश्त करना पै जाणा।
0: बस जिन्ना हो सकदा है ना ते दुखां सुखां नूं सहना सिखीए, सहज विच रहीए बेटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलो शुक्रिया जी भाई जी, बहुत बहुत मेहरबानी मेहरबानी। सो दोस्तों जुड़े हो तुसी रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे नाल 647-367-5353 647-367-5353 साडा नंबर है। सो जिदा डॉक्टर साहब ने गल कीती सी ना, ओ कहंदे वी बिल गेट्स नू एक बार कोई पत्रकार इंटरव्यू करन वास्ते गया। बिल गेट्स दुनिया दा टॉप मोस्ट रिचेस्ट आदमी, कामयाब आदमी, एक पत्रकार इंटरव्यू करन गया। ओनू कहंदा वी बिल गेट्स नू कहंदा सर तुसी इन्ने ज्यादा अमीर किवें हो गए। बिल गेट ने ओनू कहंदे एक चेकबुक दित्ती खाली, ओनू कहंदा वी जिन्ना चेक तू भरना ना भर ला अपना। तू पत्रकार कहंदा नहीं जी नहीं, चेक चुक कोई गल नहीं, चेक रखो तुसी, चेक रखो, मैनू यह दसो भी तुसी अमीर किदां इन्ने होए। ओ कहंदा मैं तैनू फिर दोबारा कह रहा भी चेकबुक तैनू मैं दित्ती है, तू चेक जिन्ना भरना अपना भर ला। वो फिर दूसरी बार भी कहिंदा नहीं जी नहीं, चेक दी छड्डो, ये गल छड्डो, मैनू तुसी दसो मेरे सवाल का जवाब दे दिओ। वो कहिंदा तेरे सवाल का जवाब यही है कि मैं जिंदगी दे विच मिली किसी अपरचुनिटी नू अजाई नहीं जान दिता। सो जिंदगी दे विच जदों भी सानू परमात्मा कोई अपरचुनिटी दिंदा है ना, सानू अपरचुनिटी अवेल करनी चाहीदी है। कई बार परमात्मा साडा इम्तिहान भी लैंदा है। सो तुहानू भजना नहीं चाहिए, नसना नहीं चाहिए, कुछ एक चीजा ना उहदे उपर डोरियां छड्ड के सानू एक्सैप्ट कर लैणियां चाहीदियां। एक्सैप्टेंस ही जिहड़ी सब तो वड्डी चीज हैगी जिंदगी दे विच। सो मैं तुहानू गल पूरी करूंगा कि एक्सैप्टेंस है की है, भाणा की है। एक्चुअली जिहड़ा असीं गुरु साहब दे नाल जुड़दे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हां, भाणा मनना सब तो वड्डा उहदे विच। गुरु साहिबान ने सानू दस्सिया ना कि भाणे दे विच रहना और भाणा मनना चाहिए। भाणा मनना है कि है, वह हैगी एक्चुअल दे विच एक्सैप्टेंस। एक्सैप्टेंस की हुंदी है कि जिस भी रजा दे विच सानू परमात्मा रखे उस रजा दे विच ही असी खुश रहना सीखीए, इहनू ही भाणा मनना कह दिंदे। सो गलबात नूं अगे कंटिन्यू करांगे। 647-367-5353 नंबर है।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478 रॉयल ऑटो सेंटर क्या बात है हाँ जी 1981 हाँ जी वीरे
2: हाँ जी वीरे सीखा जी की हाल चाल है
1: वधी वधी वीरे की बंदा बस वधी
2: वधी है वीरे मैं कमेंट करना चाहूँगा भाई अपनी फैमिली नाली ही रहना चाहिए था बट अलग अलग रह के इट्स नॉट अ वर्थ है ना अपना लाइफ जाना है कि भी हाँ वर्ल्ड च एक लाइफ कटनी होंगी एक लाइफ जानी होंगी लाइफ जाना चाहिए लाइफ न लाइफ इज टू शॉर्ट है ना यही चीज मैं कमेंट करना चाहूंगा भाई कट्टो ना लाइफ यार एक चीज पिछे भज के हमेशा बैलेंस बना के चलो पैसा लोकी बड़ा मुख रख लेंगे हाए पैसा वह पैसे बनाने के चक्कर आपकी लाइफ इन्ने साल खराब कर लेंगे ना
1: परिवार नू सेट करदे करदे बंदे जिंदगी अपनी किते ना किते खराब कर लेंदे
2: हां जी हां जी लोकी ना जिवें एक चीज ते फोकस नहीं करदे गे हुण जिहड़े मर्जी वर्ल्ड जिहड़े मर्जी चल जाओ बंदा मेहनती होना चाहिए मैनूं नहीं लगदा कोई काम ना मिले जिहड़ा बंदा मेहनती है वह कुछ भी करके रोटी रोटी चुके तो कर लूगा ना एक चीज नूं तुसीं लगातार करोगे ना आने पांच साल चार साल लगातार करोगे वह तुहानूं काम आपे ग्रो करदा जे तुसीं इमानदारी नाल काम कर रहे हो मेहनत नाल कर रहे हो किसी पिछे लग के बाहर जा वड़ो ये कर लो उठे नहीं लेना चाहिए तुसीं हमेशा अपनी उम्र देखो अपनी फैमिली देखो उस तो बाद डिसीजन लो
1: तुसीं फैमिली नूं हुण पेरेंट्स नूं मिलने किन्ना चिर हो गया तुहानूं
2: ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ
1: ਅੱਛਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਨ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਸੀਨੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤੇ
3: गवर्नमेंट जेडे एग्जाम होंगे क्लियर कर ले रैंक भी आ गया फिर जे नंबर भी आ जाता फिर भी बंदे का कुछ नहीं बनता फिर कहता यार इतने कुछ नहीं बनना बाहर चलते शायद उत्थे जाके कुछ बन गए क्यों क्योंकि उत्थे जेड़े है उन्होंने नहीं पता भी इतने कुछ आके बनना कि नहीं बनना सारा बाद इतने आके पता लगता भी उत्थे भी मेहनत सी इतने भी मेहनती है कोई फर्क नहीं गा जो इतने पर कह लो भी जिनी देर तक मच्छी पत्थर नहीं चटदी उन्नी देर तक मुड़ना नहीं
1: जी
3: कई मैं कहना चाहना बाकी
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਹੰਬੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ।

0: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ली। याद रखो, देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नू 416-930-1251 416-930-1251।
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां?
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा, 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ।
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स, ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी। वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरा नूं कॉल करो
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929। क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक, 14 स्टेनवे बुलेवर्ड, यूनिट 4, इटोबिको।
3: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
4: ले आपा हुणे करदे आ संधु साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
3: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधु नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
4: 647-706-6640।

0: सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम, तो अज ही सानू कॉल करो 647-504-1557। जदों किसी की नजर धुंधली होनी शुरू हो जाए, जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जाते ने। गड्डी चलानी मुश्किल, टीवी देखना औखा, ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आते। इसलिए बहुत लोगों ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। यह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नु भी कस्टमाइज कर देती है, बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ हो गई, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लैके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने, ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो, ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेज इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलदे ने। होर जानकारी ले ईमेल करो punjabi@lumia.io, punjabi@lumia.io, 289-982-9597, 289-982-9597।

0: सच कहे जो हुंदा
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: खुरो दी पानी सच है

0: जल्दी पहुंचो 30 रामवेल ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
2: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
3: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन कोस्ट टू कैनेडी एंड स्टील्स 9054512600 905-400-5526।
4: जदों असी फूड डिलीवर करदे आं कस्टमर्स नूं तां उनां दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
5: ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਸਿਸ ਸਾਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬਨ 55-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਾਓ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
6: ਤਵਾ ਕਿਚਨ 50 ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਾਊਂਟਨੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਵੇਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.tawakitchen.ca 905-790-1699 905-790-1699 tawakitchen.ca।
7: हाँ भाई रणवीर, इधर फाइलां चक्की फिरदा सवेरे सवेरे।
8: ओ पाजी, मोर्गेज लई महीना हो गया, एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर चक्कर काटदे हुए। यार आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मोर्गेज वाले।
7: देख भाई, जे तू लेना मोर्गेज या लोन
9: ते तेरा काम 24 घंटियां च करणगे मिस्टर संधू।
8: अच्छा जी।
10: आहो जी, नीड प्राइवेट मोर्गेज एंड लोन्स, देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-671-2000 9056712000 Mr. Sandhu।
11: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दी, घरे नहीं आना अज?
12: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा हैगा।
11: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नूं 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
12: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने, जिन्हां दा कहंदे एक डोर तो बढ़ो दूजे तो निकलो। सेविंग 100 डॉलर दी 905-458-1331 स्टेपल बुश स्टॉर रूम ते स्टेपल बुश दा इंटरसेक्शन। फ्रेश ग्रोसरी डिपो 905-458-1300।
13: छोटा मोटा कर्जा या करवानी है कोई भी घर विच रेनोवेशन, होम एक्विटी वीजा ले सकते हो। साधारण क्रेडिट कार्डा नालों कितने घट ब्याज, आसानी नाल उपलब्धता।
14: आज ही होम एक्विटी वीजा लेन दे लई कॉल करो 905-671-2000 905-671-2000। कुछ शर्तां लागू होंदियां।
15: ओ यार, बिजनेस दा माड़ा हाल होया पिया, इन्नियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
16: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाऊगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा ता हो ही नहीं।
17: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
18: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता?
19: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।
20: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
21: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
22: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
18: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जेटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कने

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: 1015।
1: A to Z किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार कर रहे हैं। लक्की भाजी दी बनियां किचन कैबिनेट देखे गुआंढ भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरियां किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 4167207073 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
2: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो, ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्होंने प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे। साड़े अप्रूवल फास्ट ने, कवरेज तुहाडी नीड के मुताबिक है, ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा, ए सारा कुछ तुहानू मिल सकता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते। तुसी मैनू कॉल करो, एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदेश आबरा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
1: डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब, अफीम, पोस्त, डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज़ के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा मार्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।

ऐसे गीत सुबह सुबह लग जाएं, और भाई जान तो फिर आपका दिन, तो कहते हैं ना वे, फिर आपका डे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ए गीता दे विच ना देखो तुहानू प्यार किन्ना अच्छा लगता, किन्नी मुहब्बत दिखाई देंदी है, किन्ना एक दूसरे प्रति खिच दिखाई देंदी है। सच यही है जिंदगी दा, जेड़ा आपस दे विच प्यार है ना, सब तो वड्डी दुनिया दी दौलत ये है। जिन्ने मर्जी ग्रंथ देख लो, जिन्ना ग्रंथ दे अगे जाके असीं नमस्कार करदे आ, नाम जपदे आ, ग्रंथां जो लिखिया है, जिन्हां ग्रंथां नूं जा के असीं मत्था टेकदे हां, जिन्हां ग्रंथां नूं जा के असीं नमाज पढ़दे हां, जिन्हां ग्रंथां नूं जा के असीं गीता च पढ़दे हां, हर ग्रंथ दे विच जिहड़ा प्यार है उस नूं सब तों उपर रख्या गया है। प्यार तों वड्डी दुनिया दे विच होर कोई चीज़ नहीं है। ये दौलतां, शौहरतां, रहना सहना, खाना पीना सब कुछ पिछे है। जे जिंदगी

0: हाउसवर्ड अप्लायंसेस मिलेंगे। हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस दे। 3298 दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: रैप्टन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905 450 2828 905 450 2828।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: आज खुश तो बात होगी था।
4: ओ ता होना ही है जब तक ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तई नकदा बनदा ही है।
3: हां मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है ते नाले ढिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है?
5: चल क्या रहे यहां पर?
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
4: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
7: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
8: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
7: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
9: मित्रां दे जंक्शन ते
10: हो केड़े जंक्शन ते?
11: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
9: रात लगियां महफलां रे
11: भाई, महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते, इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकेट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-429-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
12: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sono chahide ne, jan tusi visa services di pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Berlin.
13: एक लाइफ है जिसे लव है,
14: ये कहते मुझसे सब है,
15: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: 715. Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday manpasand kulcha plate. Tuesday chana bhatura. Wednesday lajwab veg thali. Thursday yummy haka thali. Friday maza lavo saag makki di roti da. Hey, yummy deals are simply Indian. This sariya hi location stay. Dining, take out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab simply Indian.
1: Lakha dilan di dhadkan. The superstar. Ami Wer. Blue Sound Live and Cellular Point present Ami Wer live in Toronto. At Great Canadian Casino Resort. Toronto Valley, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
6: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुने कॉल करो 905-564-6444
5: 905-564-6444
6: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो